0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अग्रणी सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्वांगणी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त होने सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन में नपरी आत्म सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख सकने
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर।

0: सोनु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sound check. Sound FM. Studio time.
2: It's 10 a.m. We have to go 10 a.m.
0: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बो

चल संगा गर जम दार की ये तिरंगे मिल चल संगा गर जम दार की बिरती के बाधेरा बन मेरा कोई बिरती के बाधेरा बन मेरा कोई इंतजार को

सूचना सूचना स्टेट स्कूल नेपाल को सेकेंड रूम प्रोग्राम को नजी एकजना महिला कर्मचारी औषधी को भूमिका दरखास्त आह्वान शिक्षित तथा योग्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का GOBSNEPL.com में प्रकाशित सूचना योग्य अनुरोध कर दरखास्त दिने अंतिम मिति यही भदौ 15 गति अर्थात अगस्त 31 तारीख।

तेरे आतंक पर निभाई पारी झाड़ी बूटी घस रखो साझ पर्दा घोड़ी गाँव घूम जाऊँ बाघ भग गंगा हाथी जितना पसे पी रंजन को छेती हो चुपचाप बसे।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आई में गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझे संपर्क राख् सकूने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर यौन हिंसा बचाओ र बचाओ यौनसन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका यौनसन्य हिंसा को जोखिम में हो सकता हिंसा छिमेकी आफन्त साथी भाई परिचित नातेदार जोसुकी हो अभिभावक ने अपना छोरा छोरी को व्यवहार ख्याल राख बाल बालिका को चाल चलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आयोग हो सकता पाइए उन्हींसंग तत्काल क्रा करो बाल बालिका सब नियमित संवाद करने करो
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त करो सुरक्षित भविष्य निर्माण करो मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिने दिने करो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी नियमित रूप में लिने करो प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाओ जलवायु परिवर्तन का असर घटाओ सामूहिक प्रयास करो वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाओ ऊर्जा बचत स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाओ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाओ वातावरण संरक्षण करो जीवन रक्षा करो
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
0: सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउ सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौं सड़क सीमा में अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौं सड़क को नाली ठल तथा पानी निकास बंद हुन नदिउ सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियम को पालना गरौं सवारी साधन में झुंडीएर वा छत में बसर यात्रा नगरौं सड़क को क्षमता भन्दा बड़ी भार प्रयोग नगरौं जेब्रा क्रसिंग मात्र बाटो काटने गरौं सड़क को तत्काल मर्मतमार करने करौं यात्रा को क्रम में कई समस्या भए नजिक को प्रहरी खबर करौं
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
0: सवारी साधन को इंजन और तेजी सुरक्षा करने संबंधी सूचना
3: आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरु तपाईले आफ्नो सवारी साधन नया खरीद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधन को इंजन र चेसिस को अवस्था रुजू वा अन्य कुनै कैफियत भई नभएको रुजू गरेर मात्र खरीद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ
0: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर बाल बालिका लागू औषध दुरूपयोग बचाऊ
3: लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोई कसैले प्रयोग नगरौ बाल बालिका लागू औषध को प्रयोग टाड़ा राख बाल बालिका को संगत में ध्यान दू लागू औषध बाट हुने हानि र कानूनी परिणाम के बारे में जानकारी दू बाल बालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं बाल बालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं बाल बालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं
0: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश
1: मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त करो सुरक्षित भविष्य निर्माण करो
0: मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिने दिने करो मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने करो प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाओ जलवायु परिवर्तन का असर घटाओ सामूहिक प्रयास करो वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाओ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाओ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाओ वातावरण संरक्षण करो जीवन रक्षा करो
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अदालत द्वारा गृहित महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को लगी नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्न अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आई में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझे संपर्क राख्न सकने
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
2: मानव देश विखण तथा ओसार पसार जघन्य अपराध हो।
0: तपाईंकै चिन्जानको व्यक्ति वा अरू कसैले रोजगारी दिने नाममा प्रलोभन नपारी लड़ाई पकाई अवैधानिक रूपमा विदेशमा पुर्याउलान् होस्ट गरौं। कसैले यस्तो लोभ देखाए घर परिवार आफन्त र वडा कार्यालयमा जानकारी दियौं।
2: देश विखण र ओसार पसारबाट बचौं, सिप सिकौं र स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनौं। मानव देश विखण तथा ओसार पसारको रोकथाम गरी नागरिक दायित्व पूरा गरौं।
0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

जीव मान्यता सातवी दिशी से की आजकल आत्मीयता यूनिट कार्पेट में विगत तीन दशक देखि को सुंदर साथ यति कार्पेट कि कार्पेट को पछाड़ी यति को लोगो हेन नबिर्स यति कार्पेट कार्पेट को शहनशाह।

बिछड़ना है, कल बिछड़ना है तो फिर यह दे वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सुनु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 10 पीएम रातको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु